0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हाँ यार सौदा सौदा
0: ओहो
3: दोनों डील कर
0: टाइट वेरी टाइट।

ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पद्र प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन् 2026 अगस्त 7 तारीख श्रावण

0: हेराई हो मर चुमर लाई टर्दैन काल केही गरी मलाई सकभर बाँची पाए गरौला उपाय चाहिँ नभए अवश्य मरौला। हस्त धन्यवाद।
1: पूर्वक राजे पालन ताहा गर्दै हरिचन्द्रजी।

पनी घुम्दै एक दिन दाई पर सरारी से आए पुगे सन्ने तारी देव मलाई बारी अहिले जान्छु भने थे जसाई

पर्वत फिर तराई हरू सब नेपाली देशी तलाक पालो कुबुना गए जाति बाहुका सही मोला मोलिना गए हरम कुमारी छोरी भैसना।